0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्कार प्रेक्षकों, आप सुन रहे हैं रेडियो वोजी तुजे हिंदी समाचार कार्यक्रम। हम आप सभी का हृदय का स्वागत करते हैं। आज के इस समाचार कार्यक्रम के आपके साथ है कार्यक्रम के संपादक न्यूज वशोरा और निर्देशक अबू मंसूर इस्माइल। हमें आशा कि आप अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहेंगे और ताजिकिस्तान क्षेत्र तथा विश्व के प्रमुख और ताजा खबरों से अवगत हो गए। तो आइए शुरू करते हैं रेडियो वोजी तुजे का हिंदी समाचार बुलेटिन।
2: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताजा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिक की हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
1: फैजल एदी जोदा ने सीआईएस के बच्चे फॉर्म के प्रतिभागियों से मुलाकात की। ताजिकिस्तान में 10 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक शिक्षक फॉर्म सीआईएस के बच्चे का समापन। ताजिकिस्तान के पर्यावरणीय पर्यटन विकास संबंधी उपलब्धियां बाकू में प्रस्तुत की गई और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। ताजिकिस्तान गणराज्य के सर्वोच्च सभा के मजलिसी ओली के प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष फैजल एदी जोदा ने 10 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक शैक्षिक फोरम कुदाकोनी इतिहाद सीआईएस के बच्चे के प्रतिभागियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फैजल एदी जोदा ने इस बात पर जोर दिया कि ताजिकिस्तान बच्चों और युवाओं के समर्थन से जुड़े मुद्दों को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मुमल्ले रहमान के नेतृत्व में देश में ऐसे लक्षित रणनीति लागू की जा रही है जिसका उद्देश्य नए पीढ़ी के लिए शिक्षा, पालन पोषण और समग्र विकास के अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार का आयोजन स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल के सदस्य देशों के युवाओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीआईएस के बच्चे फॉर्म सीआईएस के प्रमुख मानवीय परियोजनाओं में से एक बन चुका है जो सदस्य देशों के सैकड़ों प्रतिभाशाली किशोरों को एक मंच पर एकत्रित करता है। फॉर्म का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक संवाद का विस्तार करना और युवाओं पीढ़ी के बीच मित्रता तथा आपसी समाज को मजबूत करना है। ताजिकिस्तान गणराज्य जो एशियाई में परस्पर सहयोग और विश्वास निर्माण उपयोग पर सम्मेलन के ढांचे में पर्यटन क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपयोग का समन्वयक है। स्थल और हरिद्वार व्यवस्था के क्षेत्र में क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास को विशेष महत्व देता है। ये बात ताजिकिस्तान अजरबैजान में राजदूत इलहोम अब्दुलरहमान ने 23 जून को बाकू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिख देशों में हरित पर्यटन योग में कहे। सूचना जैसे खोवार ने ताजिकिस्तान के अजरबैजान स्थित दूतावास के हवाले से बताया कि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में फुआउद नगीयेव, कैरात सरीबाई तथा अन्य अधिकारियों ने संबोधन किया। सम्मेलन के दौरान ताजिकिस्तान के पर्यावरणीय पर्यटन के विकास और एक स्थिर समाज के निर्माण में प्राप्त उपलब्धियों को भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही देशों की ओर से पर्यटन क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग को जारी रखने, अनुभवों का आदान प्रदान तथा संयुक्त पहलों को लागू करने की तत्परता पर जोर दिया गया। दो دوشنبه استعدادی نهوشیم که نام پارا بالا کالا ویدیالای می دست انتراشت سانسکتک شکشه که فورم کودکونی اتحاد سیاس که بچه که سماپن سماروکا آیوجون کیا گیا. ایسا سمپن می تاجکستان که سانسات که اوچاج سدان مجلسی ملین جنکاری ده. فورم که آیوجون اوچاج ستار پارا کرنے کے لیے تاجکستان پاکش که پرتی بحر ویاد کیا گیا. یہ بھی ہے کہا گیا کہ فورم کے دوران بچوں کا سے بہاگے دیشوں کے ساس کرتے گا سبیتا اور پرمپروں سے پریچید ہونے کا افسر ملا. جو رشتر مندل دیشوں کے یووا پر ہے کہ پرتی نیدیوں کے بیچ منتری پور سمبندوں کو مضبوط کرنے کے لیے مطفع پور ہے. کرکنم کی آنت میں پرتی باگیوں کو پرمن پاتر اور پرشاست پاتر پردہن کیے گئے تتا ایک سانسکتے کرکنم پرستوت کیا گیا. یہ فورم پالے بر تاجکستان میں 15 سے 22 جون تک شوہین بال وشرم گرہ میں آیوجت کیا گیا تھا اور 23 جون کو دوشنبے میں اس کی گتیویدیاں جاری رہی. دوشنبے بچوں نے تاجکستان کے سانسد تتا راجدھانی میں وبھن سانسکتے کے سانستانوں کا بھی دورہ کیا. پیاریس نیوالوی تستایی سمچر هماری دوسری پراسارون جارایی هماری ریدیو که سات رایی.

0: आवाज़ें ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ें ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्कार प्रेक्षकों, आप सुन रहे हैं रेडियो वोजी तुजिक हिंदी समाचार कार्यक्रम। हम आप सभी का हृदय का स्वागत करते हैं। आज के इस समाचार कार्यक्रम के आपके साथ है कार्यक्रम के संपादक न्यूज वशोरा और निर्देशक अबू मंसूर इस्माइल। हमें आशा कि आप अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहेंगे और ताजिकिस्तान क्षेत्र तथा विश्व के प्रमुख और ताज़ा खबरों से अवगत हो गए। तो आइए शुरू करते हैं रेडियो वोजी तुजिक का हिंदी समाचार बुलेटिन।
2: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिक की हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
1: फैजल इदी जोदा ने सीआईएस के बच्चे फॉर्म के प्रतिभागियों से मुलाकात की। ताजिकिस्तान में 10 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक शिक्षक फॉर्म सीआईएस के बच्चे का समापन। ताजिकिस्तान के पर्यावरणीय पर्यटन विकास संबंधी उपलब्धियां बाकू में प्रस्तुत की गई और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। ताजिकिस्तान गणराज्य के सर्वोच्च राज्य सभा की मजलिसे ओली के प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष फैजली दिलजोदा ने 10 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक शैक्षिक फोरम कुदाकोनी इतिहाद सीआईएस के बच्चे के प्रतिभागियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फैजली दिलजोदा ने इस बात पर जोर दिया कि ताजिकिस्तान बच्चों और युवाओं के समर्थन से जुड़े मुद्दों को विशेष महत्व देता है। उन्होंने कहा कि इमोमाली रहमान के नेतृत्व में देश में ऐसे लक्षित रणनीति लागू की जा रही है जिसका उद्देश्य नए पीढ़ी के लिए शिक्षा, पालन पोषण और समग्र विकास के अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के आयोजन स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल के सदस्य देशों के युवाओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीआईएस के बच्चे फॉर्म सीआईएस के प्रमुख मानव परियोजनाओं में से एक बन चुका है जो सदस्य देशों के सैकड़ों प्रतिभाशाली किशोरों को एक मंच पर एकत्रित करता है। फॉर्म का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक संवाद का विस्तार करना और युवाओं पीढ़ी के बीच मित्रता तथा आपसी समाज को मजबूत करना है। ताजिकिस्तान का राज्य जो एशियाई में परस्पर सहयोग और विश्वास निर्माण उपयोग पर सम्मेलन के ढांचे में पर्यटन क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपयोग का समन्वयक है। स्थायी और हरीदर व्यवस्था के क्षेत्र में क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास को विशेष महत्व देता है। ये बात ताजिकिस्तान अजरबैजान में राजदूत इलहोम अब्दुलरहमान ने 23 जून को बाकू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सीखा देशों में हरित पर्यटन योग में कहे। सूचना जैसे खबर ने ताजिकिस्तान के अजरबैजान स्थित दूतावास के हवाले से बताया कि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में फुआउद नगीयेव, कैरात सरीबाई तथा अन्य अधिकारियों ने संबोधन किया। सम्मेलन के दौरान ताजिकिस्तान के पर्यावरणीय पर्यटन के विकास और एक स्थित समाज के निर्माण में प्राप्त उपलब्धियों को भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही देशों की ओर से पर्यटन क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग को जारी रखने, अनुभवों का आदान प्रदान तथा संयुक्त पहलों को लागू करने की तत्परता पर जोर दिया गया। دوشنبه استعدادی نهوشیم که نم پارا بالا کالا ویدیالای می دستان تراشت سانسکتک شکشه که فورم کودکونی ویتیهود سیایزگی بچه که سماپن سماروکا آیوجون کیا گیا. ایسا سمپن می تاجکستان که سانسات که اوچاج سدان مجلسی ملین جنگ کرده. فورم که آیوجون اوچاج ستار پارا کرنه که لیه تاجکستان پاکش که پرتیا بحار ویاد کیا گیا. یہ بھی ہے کہا گیا کہ فورم کے دوران بچوں کا سے بہاگے دیشوں کے سانسکرتے کا سبیتہ اور پرمپروں سے پریچد ہونے کا افسر ملا جو رشتر مندل دیشوں کے یووا پر ہے کہ پرتینیدیوں کے بیچ منتری پور سمندوں کو مضبوط کرنے کے لیے مطفہ پور ہے کرکرم کے آنت میں پرتی باگیوں کو پرمن پاتر اور پرشاست پاتر پردہن کیے گئے تتہ ایک سانسکرتے کرکرم پرستوت کیا گیا یہ فورم پالے بر تاجکستان میں 15 سے 22 جون تک شوہین بال وشرم گرہ میں آیوجت کیا گیا تھا اور 23 جون کو دوشنبے میں اس کی گتیویدیاں جاری رہے دوشنبے بچوں نے تاجکستان کے سانسد تتہ راجدھانی میں وبھن سانسکرتے کے سانستانوں کا بھی دورہ کیا پیاریس نیوالوی تستایی سمچر ہمارے دوسرے پراسارن جا رہی ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے.